0: Good morning, Itu Agashwani Kohima. Pujulaka Kobur Puria Zim Kunglongla. Pratan Mandri Narendra Modiba, 2400 Korotuka incentives to Pratan Mandri Vixit Bahara Rosgar Yojana Nijidi, Ikta function Nidality Jagali Rakigana Bakuri de Se. Ito Bakuri diapra, scheme implement Kurialaka Kamiab Dikayasi, John to Sarkar flagship employment link incentive scheme Hoigana, now credibly, Rosgar Hidibali, Aro subsectors the social security coverage Jolti Bar Hidibali Bhavana Se. Afzadi Kutakri, Prime Minister Pratan Mandri Bakwesike, 21st century di Hobida Kando skilled talent, Sikaidia, innovation and idea, aru quality laga sobse ucha standards rakhya desh khan laga ase. Tar Bakwesike, India bra, agi korigena jari jabali tayarase. Sri Modi Bakwesike, India laga naujuan ba, global growth, innovation aru entrepreneurship di, ahibali thakya samaydi agi koribali ase.
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: श्री मोदी वाकोसिके पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पर सबसे पहला पर इम्प्लॉइज इम्पावर करेगा नौजवान और इंडस्ट्री मजदूरी जोड़ाई दिवला से। 18 रक्या ओरिएंटेशन टू नागालैंड स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एग्रीडेशन फ्रेम

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं।

जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों

0: के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया के सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें NVIDIA और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं

0: रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल एक से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 8 अरब डॉलर से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज़।
3: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों के सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाह का, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
2: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to inaugurate and lay foundation stone of development projects worth over 47,000 crore rupees in Odisha's Mayurbhanj district today. Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control,

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Dragoban 103 MHz. News, music and entertainment. FM 103 MHz.
2: सलाम नमस्ते आदाब, आप सबका स्वागत है आकाशवाणी कोहिमा FM ट्रकपैन 103 MHz से। मॉर्निंग हुई जैसे 9:30 हुई, तो आपने यहाँ न्यूज पे होने लिशे, तो इतने ऐसे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम आर जे चॉइस विथ योर होस्ट विथ योर डोज आर जे टिया, तो आपने यहाँ ट्यून इन करेगी ना ऐसे के लिए, तो फिर से स्वागत करे ऐसे इतु प्रोग्राम ते। तो आज लगा आर जे चॉइस प्रोग्राम ते गाना हम तो बस बाल बाल ऐसे, बट यस सैटरडे ला दिन भी ऐसे सैटरडे ला दिन दे दो बिशी काम भी थकी जाए, यू नो सैटरडे इज ऑल अबाउट डूइंग अ लॉट ऑफ चॉर्स। हफ्ता पूरा मई खान की काम करी थके निजर खाने टाइम ना पाई जाए, तो आर जे चॉइस ला टाइम दे मैं उम्मीद करे से अपनी खान टेकिंग अ टाइम फॉर योर सेल्फ एंड लिसनिंग टू द रेडियो और यू प्रोग्राम शुनी शुनी कि आपनी हाँ की काम से यू भी कर मैं उम्मीद करे से, बट येस अपनी हाँ टाइम पाई कहे हलोप यू नो मी टाइम भी पाई कहे, तो जी हुई भी प्रोग्राम से एस एम एस कर पाठी 9436805333 दो नंबर से 9436805333 दे मेसेज कर पठाबले पड़े। तो प्रोग्राम शुरू कर दिए से और प्रोग्राम लगा शुरुआत दे दिए से जमीन फिल्म के और हेमा सरदेसाई लगा आवाज़ दे तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी फिल्म क्वा निशना जमीन फिल्म बार से 2003 ला से जमीन कर ले, तो पुराना फिल्म अमिताभ बच्चन ला फिल्म भी याद आए हुई भी तू तो नुतून वाला से, एंड इफ यू हैव वॉच दिस मूवी आई थिंक यू फिल्म दे बिपाशा बासु और अजय देवगन भी ओलाई और यू गाना गे म्यूजिक दिशे हिमेश रेशमिया, यस हिमेश रेशमिया वॉज क्वाइट पॉपुलर बैक इन 2000 भी गाना बेसि बाल बाल तई बनाई गिना से बिफोर ही ऑफिशियली टर्न इन टू अ प्लेबैक सिंगर तई म्यूजिक डायरेक्टर है से, तो गाना बाल बाल आसे और यू फिल्म के स्पेशली तो गीत के बोल दिशे लिरिक्स दिशे समीर, तो इतना शुनिया हम के और हेमा सरदेसाई लगा आवाज़ दे तेरी संग एक सिंपल सी कॉफी फ्रॉम द मूवी जमीन।

0: तो आप निकान होनी था कि शे इतिया होने लगा फ्रॉम द मूवी कुछ तो है और कुछ नहीं बहुत कुछ है इस स्टूडियो के अंदर बिकॉज वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट मिस्टर ऋषि कुमार शर्मा ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली आकाशवाणी. नमस्कार सर, आपको कैसा महसूस हो रहा है हमारे स्टूडियो में आके?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अभी दो दिन पहले कोहिमा आया हूँ और कोहिमा इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड कोहिमा के साथ साथ मैं जुलू के एंड खोनोमा विलेज देख कर आया हूँ. इट इज़ जस्ट लाइक हेवन, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है. और अभी मैं आज वापस जाऊँगा एंड साथ में मैं अभी तवांग होकर आया हूँ.
0: तवांग अरुणाचल भी होके आए हो?
1: जी, तवांग ऑल इंडिया रेडियो भी गया था मैं वहाँ पर और मैंने देखा कि रास्ते में जंग फाल पड़ा था और जहाँ पर कोयला फिल्म का गीत शूट हुआ था, है ना, तन्हाई तन्हाई. अच्छा. शाहरुख खान एंड माधुरी दीक्षित का
0: जी.
1: एंड ऑल नॉर्थ ईस्ट इज वेरी अमेजिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल.
0: तो आप जैसे आप खुद भी एक आरजे हो दूरदर्शन
1: जी
0: दिल्ली के लिए और जैसे आप ऐसी जगह पे जाए हो गए हो तो आपको कैसा लगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, बहुत सारे श्रोताओं जो होते हैं वो रेडियो सुनते हैं और उनका अनुभव आपको, आपका अनुभव उनके साथ कैसा रहा?
1: श्रोता आरजेस को और अनाउंसर्स को बहुत प्यार करते हैं.
0: वो तो है,
1: वो बहुत प्यार करते हैं और उनकी एक एक चीज को नोट करते हैं कि कैसे बोलते हैं और कैसे सॉन्ग सुनवाते हैं और सारी चीजों को बड़ा नोट करते हैं. आज आप देखिए ना कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो प्योर हिंदी में बोल रहा हूँ, है ना, एंड आप नागमीज इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके बोलते हैं तो उनको सुनाई आता है, लेकिन मैं प्योर हिंदी यानी शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपके श्रोताओं को एक नई आवाज़ और नई चीज़ सुनने के लिए मिल रही है.
0: वो तो है, वो बिल्कुल है. मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर्स हैं, हमारे जो श्रोताएं हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा आपका सुन के. काफ़ी बार हम FM रेनबो हो या दिल्ली के जो काफ़ी कार्यक्रम हो ब्रॉडकास्ट किए करते, आई मीन वी कीप ऑन ब्रॉडकास्टिंग हियर, बट ये पहली बार है कि वहाँ के कोई आरजे यहाँ आकर हमारे अपने श्रोताओं से ऐसे बातचीत करे. तो जैसे हम आप बोल रहे थे कि आप अरुणाचल गए थे, तवांग गए थे और कोयला मूवी मैं शूट वही पे हुआ था, ये नई चीज मुझे आज पता चली है. तो चलिए हम एक गाना सुनते हैं उसी मूवी के साथ.
1: लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आज मैं यहाँ पर कोहिमा और नागालैंड आया हूँ तो मैं यहाँ से बहुत सारी मेमोरीज लेके जाऊंगा, बहुत सारी यादें लोगों के साथ शेयर करूंगा और नागालैंड कितना ब्यूटीफुल है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, इस बात को पूरी दुनिया में बताऊंगा.
0: ये बहुत I think we are very grateful of it. ना अपना अपना अनुभव होता है हर जगह की, बहुत अच्छी बातें होती है और हर दुनिया में, समाज में बहुत ऐसी बातें भी होती है जो आपको पसंद भी ना नहीं आई होगी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी आप मेमोरीज लेके जा रहे हैं वो अच्छी ही हो.
1: यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो पसंद ना आए, सब कुछ बहुत अच्छा है.
0: सबसे पसंदीदा चीज कौन सी लगी आपको?
1: सबसे पसंदीदा चीज मुझे यहाँ की ड्रेसेस लगी,
0: कपड़े यहाँ के,
1: यहाँ के बहुत अच्छे कपड़े हैं. और सबसे पसंदीदा लोगों ने बताया कि हॉर्नबिल फेस्टिवल होता
0: जी,
1: है
0: जी.
1: और मैं आपको प्रॉमिस करके जा रहा हूँ हॉर्नबिल मैं अवश्य आऊंगा और हॉर्नबिल देख कर जाऊंगा.
0: हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल माना जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप वापस आएंगे. तो गाने की ओर बढ़ते हैं और जैसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आप तवांग गए हो, नॉर्थ ईस्ट घूम के आए हो, तो कोयला फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत ही पसंद हो, जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे के साथ, वो कौन सा गाना?
1: मैं आपको बताता हूँ, जब मैं वाटरफॉल पर गया तो मेरी वाइफ मेरे साथ थी और मैंने अपनी वाइफ के साथ वो इमोशंस और वो एक्शन शूट किए द सेम कि तन्हाई तन्हाई.
0: ओ, माधुरी और शाहरुख खान, तो आप शाहरुख खान बने हो?
1: जी, शाहरुख खान.
0: बहुत बढ़िया,
1: है ना.
0: तो आई थिंक मुझे शायद इल्म है कि कौन सा गाना आप सुनना पसंद करेंगे. बहुत ही रोमांटिक गीत है. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो धर्म पत्नी है वो भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और आप उनको भी ये गाना बहुत ही पसंद आएगा. और मैं उम्मीद करे से दैट मोई खान लगा लिसनर्स भी आज महाला गेस्ट ऋषि कुमार शर्मा जी जो हमारे साथ है स्टूडियो में, ताई लगा एक्सपीरियंस नॉर्थ ईस्ट हुई, नागालैंड हुई, बिशी बाल थी शिक्षा और खास कर ताई दू गाना ताई लगा वाइफ एंड ऑफकोर्स टू आर लिसनर्स खान के डेडिकेट करे से. तो हुनी वो अलका याग्निक और उदित नारायण लगा वास्ते तन्हाई तन्हाई.

Well, dear listeners, आज लगा प्रोग्राम थे आखिरी की दिए से मुझसे शादी करोगे और ये तो करना लोगों ते ही तो प्रोग्राम समाप्त करा हो बो राइट आफ्टर दिस प्रोग्राम वही खान आसे वर्ल्ड न्यूज़ फॉलोड बाय आरजेस चॉइस वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम तो दिए से मुझसे शादी करोगे परा लाल दुपट्टा उदित नारायण और अलका याग्निक

0: नागालैंड सेंसस लगा पहला फेज तो आई है जून 16 पर 30 तारीख भीतर ते अपनी खान घर लगा डिटेल्स ऑनलाइन दे भरे बोले कारणे se.census.gov.in ते जाबी अपनी खान लगा घर जी होले भी गिनती होबो लागे अपनी खान भाग लुआ परा भाव प्लानिंग और डेवलपमेंट कर बोले मदद पाबो अमी खान लगा सेंसस अमी खान लगा डेवलपमेंट
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया। अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
4: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

0: Sobsorkar Health Centers day BP laga free check up treatment aro kal phal thakibo laga motop PSA BP laga kunba sawal thakile toll free number 1-800-116-666 call koribi
1: BP haribo desh jitibo
2: kitu jankari NTEP bra PSA
3: Jai Hind pichle ek dashak mein aapne ek badlav notice kiya अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
4: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Dragoban 103 MHz News, Music and Entertainment FM 103 MHz
2: हेलो डियर लिसनर्स, आप सबका स्वागत है हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम यस फोन इन दे। तो इतना लगा फोन इन प्रोग्राम शुरू करी दिया से फोन इन दे अपने गला फेवरेट सॉन्ग आपकी फरमाइशें हो, आपका फेवरेट गाना हो, अगर आप रेडियो पे सुनना चाहते हैं और किसी खास इंसान को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आज वो मौका भगवान ने और FM ट्रकपेन ने आपको दिया है। तो बस कॉल कीजिए काफ़ी बार प्रोग्राम का फॉर्मेट ही ऐसा होता है कि हम आपके गाने जो होते हैं नहीं बजा पाते हैं, बट यस वी हैव आवर लाइव फोन इन प्रोग्राम जहां आप हमसे बातें करेंगे और आपके जो फेवरेट ट्रैक है, आपके पसंदीदा गाने हैं, वो आप किसी खास इंसान को डेडिकेट भी कर पाएंगे। तो हुनी ऐसे फर्स्ट कॉलर आही रहे तो फोन तो उठाई दीब और सबको ताकि गाना रिक्वेस्ट करो। हेलो
3: हेलो
2: हेलो नमस्कार
3: नमस्ते
2: नमस्ते
3: दीदी
2: ভাল আছে আপনি কোতে বা কল কৰি আছে আৰু আপনি
3: আইকন
2: মুন্দা আরে বাহ আপনি মেসেজেস তো বেশি পাই থাকে আজি ফার্স্ট টাইম আপনি কথা কৰাবে বেশি ভাল লাগি আছে তো আজি তো আপনি ফোন বি লাগি

0: FM 드래그밴 뉴스 뮤직 앤 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠
1: 12 বাজে হওয়ার লগত মাই ডিয়ার লিসনার্স ইতিয়া দি আছে রিয়েল টাইম ট্রাফিক আপডেট নর্থ বাউন্ড কইলে তো টুয়ার্ডস সিভিল সেক্রেটারিয়েট সাউথ বাউন্ড কইলে তো টুয়ার্ডস পিরা হিল মনকুলা টু পিএইচ কিউ জাংশন নর্থ বাউন্ড ট্রাফিক ইজ মডারেট বেশিবি নহয় কমটিবি নহয় সাউথ বাউন্ড কইলে ট্রাফিক টু লাইট আছে আলটারনেট রুট অল মিনিস্টার্স হিল টু জেল কলোনি পিএইচ কিউ জাংশন টু মেজর জাংশন নর্থ বাউন্ড ট্রাফিক মডারেট হাওয়েভার সাউথ বাউন্ড ট্রাফিক ইজ হেভি আলটারনেট রুট are paramedical to model to IG or Lady Smile route. TCP to Razu Point, northbound the traffic is moderate, southbound the traffic is heavy. The alternate routes are TCP to Razu Point, box cutting to NHAK to Census Point, and Phulbari to Kuzuche Ground to Razu Point. Razu Point to Census Point, northbound the traffic is light, southbound the traffic is heavy. The alternate route are Census Point to NHAK. High School Junction to Census Point, northbound ko ilito traffic to light ase, aro southbound to traffic moderate ase. Billy Graham Road to DBS Road lobo pare, na hoile High School Junction to T-Mo. মডেল রোড বি লোব পারে NHAK জাংশন টু সেন্সেস পয়েন্ট নর্থ বাউন্ড আর সাউথ বাউন্ড দুইটা রাস্তা বি ট্রাফিক টু লাইট আছে হইলিবি আলাক রাস্তা লোব কইলে টিসিপি টু রাজু পয়েন্ট লাগা রাস্তা বি লোব পারে আর এই তো থাকিছে রিয়েল টাইম ট্রাফিক আপডেট ফর 12 নুন
2: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual vivity engine and spacious interiors.
3: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: FM Dragoban. News, music and entertainment. FM 103 megahertz.
1: Welcome back dear listeners. Apni khan huni ase AIR FM Chakupan 103 megahertz te Hindi film songs program live phone in. To apni khan itu program te itya bhi phone in kura nai kule 0370224303 te call kuri bole parebo aro favorite song to request kurile parebo aro itya khota kura time te hi phone to ahi jaise to phone uthai diye se aro janibo kon call kuri ase. Hello, namaskar.
4: Hello, hello, good morning.
1: Good morning.
4: Good evening.
1: গুড আফটারনুন
4: গুড আফটারনুন জি জি
1: জি
4: ভুলে গে
1: হ্যাঁ বলিয়ে আপনার নাম বতাইয়ে
4: জি মেরা নাম হ্যাঁ অনুপ কুমার ভট্টাচার্য
1: অনুপ কুমার ভট্টাচার্য জো অনুপ জি নমস্কার
4: নমস্কার আপকো নমস্কার সত্যকাল সালাম আলাইকুম
1: জি
4: রাধে রাধে
1: তো আপকা স্বাগত হ্যায় ইস কার্যক্রম মে
4: জি জি জি
1: তো অনুপ আপ কহাঁ সে বোল রহে হো
4: मैं तो ये करीम डिस्ट्रिक्ट करीम जी श्रीभूमि
1: अच्छा श्रीभूमि
4: श्रीभूमि डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ और हमारा तालुका पे आसाम प्रदेश के रहने वाला हूँ
1: अच्छा आसाम से आज आप कॉल कर रहे हैं तो अनूप कौन सा गाना कौन सा गीत कौन सी मूवी का आप सुनना पसंद करेंगे
4: जी और मूवी का नाम है प्रेम गीत
1: प्रेम
4: और प्रेम गीत और गाने का बोले से होटो से छोलो तुम मेरा गीत अमर कर दो ऐसे करके गाने हैं
1: जी एक बहुत प्यारी सी गजल है ये
4: जी जी जी
1: जगजीत सिंह
4: अनुराधा जगजीत सिंह जी
1: और यशवंत सिंह तो ये जी, गीत जी. आप किसी खास के लिए बजवाना
4: जी जी पहले आप जैसे क्या कहो मतलब बहुत अच्छे दोस्त है आपके लिए डेडिकेशन है और प्रेमजीत चक्रवर्ती अविनाश जी और अमर सिंह साहू जी पुरुषोत्तम कुमार कश्मीर से और श्रीकांत जोशी जी और है विजय सिंह लखेरा जी अनुहार बिहारी भाई के लिए और ढेर सारे श्रोता अभी सुन रहे हैं इस मनोभावन प्रोग्राम सबके लिए।
1: अरे बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है। खासकर ये जो गीत है, म्यूजिक दिया है जगजीत सिंह ने, लेकिन काफी बार उन्होंने ये गीत गाया भी है, लेकिन ये जो फिल्म में है अनुराधा पोटवाल और जसवंत सिंह ने गाया है। तो हम सब ये इस गाना सुन के बहुत ही इसका आनंद उठाएंगे। थैंक यू सो मच अनुराधा
4: जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
1: তো অনমোলজি বা রিকুয়েস্ট করা নিচনা প্রেম গীত পা দিয়েছে অনুরাধা পোটওয়াল আর যশবন্ত সিং কি আওয়াজ মে হোটো সে ছু লো তুম জগজিৎ সিং লাগা মিউজিক আছে আর লিরিক্স লিখেছে ইন্দিবীর।

0: ডিয়ার লিসনার্স, আমি খানা দুসরা কলার বি কল করে আছে, তো ফোন উঠাই দিয়েছে। হ্যালো,
1: হ্যালো, নমস্কার
0: নমস্কার নমস্কার, আপনার স্বাগত হ্যাঁ।
1: মে রাকেশ বাত কর রহা হুঁ, শিমলা সে।
0: আচ্ছা রাকেশ জি, তো
1: রাকেশ জি
0: আপ কহাঁ সে বাত কর রহে হ্যায়, ফির সে আপ বতায়েঙ্গে।
1: শিমলা শিমলা শিমলা হিমাচল প্রদেশ।
0: আরে শিমলা তো বহুত হি খুবসুরত জগহ হ্যায়।
1: জি জি জি জি,
0: তো অভি গরমি আ গই হ্যায় শিমলা মে।
1: বিলকুল বিলকুল, গরমি ভি আ গই হ্যায় অর হামারে কুদরতি জো হ্যায় পাংখে ভি চল রহি ঠান্ডি ঠান্ডি হাওয়া।
0: আরে বাহ, বহুত হি
1: আচ্ছা আচ্ছা মৌসুম। আপ আয়ে হ্যায় কবি শিমলা?
0: জি হ্যাঁ হ্যাঁ বিলকুল বিলকুল, মে শিমলা আই হুঁ। শিমলা মে মল রোড হ্যায়, ওয়াহাঁ পে
1: জি মল
0: বহুত
1: যাক মন্দির হ্যায়, রিজ ময়দান হ্যায়, অর শিমলা কি কোর্ট খাই ভি আচ্ছি হ্যায়। কোর্ট খাই মে জো হামারে अरे भरे जो है एप्पल का पे एप्पल होते हैं।
0: जी जी जी, सेब बहुत फेमस होते हैं शिमला के, हिमाचल के।
1: जी जी, शिमला के सेब बहुत बड़े फेमस होते हैं। जी जी जी,
0: तो राकेश जी आज इस प्रोग्राम में आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: जी तो आज मुझे गाना सुनना है कोई मेरे दिल में है।
0: कोई मेरे दिल में है
1: जी,
0: ये फिल्म का नाम है?
1: हाँ फिल्म का नाम है। अच्छा, कोई मेरे दिल में
0: जी जी है हमारे पास
1: इसका हाँ टाइटल सॉन्ग
0: जी। और ये गीत किसी खास के लिए?
1: सबसे पहले तो ये आपको डेडिकेट रहेगा।
0: अरे थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
1: पूरन वर्मा, अविनाश टेली, भगवान सिंह परमार, मंगी भगवान सिंह परमार हैं, और रुखो मिला बिता है मिठा है, और अमल बसमाचार्य हैं, और विमल भस्माचार्य है, रमेश पात्र हैं, रमेश प्रजापति हैं, और भगवान सिंह परमार हैं, और शिवा लोहत हैं, और तमाम सुनने वाले श्रोता है जो एक कॉलर आए थे जो एक उनका नाम नहीं सुन पाया मैं, जो थे कि मिलजुल के रहना चाहिए, तो उनके लिए भी गाना डेडिकेट रहेगा।
0: जी जी बिल्कुल सही मैसेज दिया है आपने, मिलजुल के रहना चाहिए।
1: एक जी एक से, हाँ। बिल्कुल, मैं एक से एक मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर मानो कि हमें इतने दोस्तों का नाम याद रहता तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अगर मानो कि हमारे रेडियो के माध्यम से 100 दोस्त बन जाते हैं, अगर 100 लोगों का नाम लेंगे तो फिर प्रोग्राम का समय तो इसमें हो जाएगा कि लेकिन दोस्तों का नाम सिर्फ 4 या 5 ले सकते, इस तरह तो नहीं ले सकते। तो इसलिए ये है कि जो भी दिमाग में आता है क्या वो उनका नाम लेना चाहिए, हाँ जिनका नाम नहीं लिया जाता है तो उनको समझना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी आ जाएगा हमारा नाम। देखो और भी तो लेते आपका नाम, तो आपका नाम तो ऐसे ही आ जाता है ऑलरेडी रेडियो में।
0: जी जी सही कहा आपने, और दोस्ती में थोड़ी नोकझोंक तो होती रहती है, कहते हैं ना दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो गीत है, जो भी मन मुटाव है, ये गीत आपके ये गीत जो आप डेडिकेट करें अपने फ्रेंड्स के लिए, ये
1: जी जी।
0: सब कुछ ठीक कर देगा, और आप टेंशन ना लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जो सारे 100-200 फ्रेंड्स हैं वो सब ये गीत सुन रहे हैं, और सबको बहुत ही अच्छा लगेगा ये गीत। थैंक यू राकेश जी फॉर कॉलिंग।
1: जी धन्यवाद।
0: तो राकेश फ्रॉम हिमाचल शिमला ताइबरा रिक्वेस्ट करे ला गीत दिए से, कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल में है। और इतु गाना तो ताई खास कर टाला फ्रेंड्स खान के डेडिकेट करले मन जाए से। আৰু য়েছ, নান আদাৰ দেন আ লট অফ আৰ ৰেগুলাৰ লিচনাৰ্ছ, তাইখন সদায় এইটো গানাটো শুনি থাকে, আৰু গানাখন ৰিকুৱেষ্ট বি কৰি থাকে, ডেডিকেট বি কৰি থাকে। তো তাই এইটো গানাটো তাইখন সবকে ডেডিকেট কৰি আছে, তো কৈ মেৰে দিল মে হে।
2: কাগজ কলম নহীঁ ইছ বাৰ।

0: This is Akashvani Kohima, the FM News headlines at 12:30 noon. Electronics and Information Technology Secretary S. Krishnan stresses need for safe, resilient and inclusive internet ecosystem. National Testing Agency to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination. Vice President Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi extends birthday wishes to President Draupadi Murmu. Norman Futzerer College hosts Young Indians Parliament event. International Yoga Day 2026 to be celebrated globally tomorrow. Four Nagaland University researchers participate in World Bank Youth Summit. President Draupadi Murmu to attend International Yoga Day program in Madhya Pradesh, Jabalpur. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. Prime Minister Narendra Modi to begin two-day West Bengal visit today to lead International Yoga Day celebration in Kolkata. India Assisted Dormitory building inaugurated at Monastic School in Nepal's Lomantang. Union Minister Manohar Lal, Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav to grant housing approvals worth 2,500 crore. U.S. President Trump unveils newly refurbished Air Force One aircraft. In football, Brazil registered first win of FIFA World Cup 2026, beating Haiti by three. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of series in Chennai this afternoon. And that is all we have in this news headlines.
1: नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना। रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
5: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Tragoban 103 MHz News, Music and Entertainment FM 103 MHz
2: वेलकम बैक डियर लिसनर्स, अपना कान होने से आकाशवाणी को हिमा एफ एम चाकोपैन 103 मेगाहर्ट्ज से हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम आर रेज चॉइस। तो प्रोग्राम शुरू करिए से और प्रोग्राम ते गीत दिए से अनुराधा श्रीमान लगा आवाज ते दुपट्टा फ्रॉम द मूवी मुझे कुछ कहना है। म्यूजिक दिशा अनु मलिक और लिरिक्स लिखे समीर।

निखिल पॉल जॉर्ज और नीति मोहन नागा वास्ते हुनी थे किसे शादी के साइड इफेक्ट्स पर ताई लगा एकदम पॉपुलर गीत और प्रोग्राम थे आखिरी गीत बचाए से हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम आरजेस चॉइस से लाइफ पार्टनर लगा फिल्म पर सोहम चक्रवर्ती और श्रेया घोषाल लगा वास्ते तेरी मेरी ये जिंदगी और इतु गीत लगोते ही आज लगा मॉर्निंग प्रोग्राम खासकर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम तो समाप्त करिए से इतु प्रोग्राम हा पिसोटे आपनर कान हुनिबो एफएम रेनबो लगा रिले और एफएम चकोपन तो 3 बजे हुआ लोगो लोगो वापस आ हुबो सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर मैसेजेस थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन आई होप यू हैव अ वंडरफुल सैटरडे अपनी लास्ट सैटरडे तो बेसि भल बजाबी कुना मैं उम्मीद करे से और सदाई निगा एफएम चकोपन शुनी थी और लास्ट गीत प्रोग्राम दिए से सोहम चक्रवर्ती और श्रेया घोषाल लगा वास्ते तेरी मेरी ये जिंदगी प्रीतम लगा म्यूजिक जावेद अख्तर लगा लिरिक्स फिल्म से लाइफ पार्टनर.

जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्व भर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि।

होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। जैसे गानों का है आवाज से रिश्ता, सुरों का है सांस से रिश्ता। जो गाने रहते हैं आपकी जुबान पर, नक्श छूट जाते हैं आपके दिलो जहाँ पर, वही गानों के बारे में पूछेंगे आपसे और बहुत सी बातें भी करेंगे आपसे, क्योंकि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग आकाशवाणी रेनबो पर 9868107070। ये वो व्हाट्सएप नंबर है जहाँ भेज सकते हैं वो गाने जो वजह बेवजह है आपके दिल के करीब। जी हाँ, वो गाने जिसकी धुनें बहुत पसंद है, जिससे जुड़ी कोई याद है, कोई बात है, या बस प्रियंका मुझे उससे वाइब कनेक्ट हो जाती है, बस वो आज वो प्ले कर दो। रीज़न बताएंगे ना कि गाना मुझे क्यों पसंद है, तो बस मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 2000 ईयर के बाद के गाने हो, थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन बहुत पुराने ना हो, ये प्रोग्राम का प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो बाकी मैं देख रही हूँ कि न्यू जो मैसेजेस हैं वो फ्लैश हो रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो 9868107070 जल्दी से भेजिए। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड आफ्टरनून।

खोज में निकल तो किस लिए आदर्श है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र दो, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कप कपाएगा, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी

खुद की खोज में निकल। जी हाँ, ये एक ऐसा पोएटिक कॉम्पोजिशन है जो सिर्फ सुनाई नहीं देता बल्कि सीधा दिल तक पहुंचता है ना। इसके थॉट प्रोवोकिंग लिरिक्स सेल्फ डिस्कवरी, करेज, रिजिलियंस का पावरफुल सेलिब्रेशन है। और अमिताभ बच्चन की जो गहरी कमांडिंग वॉइस है वो तो इसमें और गहराई ला देती है। जी हाँ, इमोशनल डेप्थ ले जाते हैं। मानते हैं ना बात, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। और जैसे कि मैंने कहा है 9868107070 पर जल्दी से मुझे मैसेज कीजिए और बताइए वो गाने जो वजह बेवजह हैं आपके दिल के करीब। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश, सूरज हुआ मध्यम, चाहन चलने लगा, कभी खुशी कभी गम। जी बिल्कुल, ये गाना मैंने जो है ये क्यों कर लिया है। और मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर का भी मैसेज आया है और इन्होंने भी 3-4 गानों के मेरे रिक्वेस्ट भेजी है। साथ ही में होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, फिल्म राम लखन का तेरा नाम लिया तुझे याद किया। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं मेरा वाला सॉन्ग, गुड आफ्टरनून। आज के कार्यक्रम में किसी भी गीत में नाम शामिल कर लीजिए। और न्यूज और ऐप है बॉलीवुड ट्रेल से कार्यक्रम प्रसारण नहीं मिल रहा, कार्यक्रम मिस कर रहा हूँ। जी हाँ, ये मुझे मैसेजेस आए हैं कि आज प्रोग्राम जो है वो न्यूज़ ऑन ऐप के थ्रू आप नहीं सुन पाए हैं, इसका हमें खेद है। और इसी के साथ चलिए अभी हम लगाते हैं। और इसी के साथ हमें जर्मनी से मैसेज आया है ईला और सौरभ का, उन्होंने भी गाना की रिक्वेस्ट की है। फिलहाल हम सुनते हैं सूरज हुआ मध्यम, चांद चलने लगा, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़। फिलहाल मैं प्रियंका वर्मा अपनी आवाज़ को विराम देती हूँ।

0: कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: वेली मैसेज आया, गुड आफ्टरनून मेरा वाला सॉन्ग। ओके, इन्होंने हमें दो तीन चॉइसेस भेजी थी, और आनंद विहार से किशन वंचनी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी से। इन्होंने कहा था कि रब ने बना दी जोड़ी से होले होले

बिल्कुल, हौले हौले प्यार हो जाता है। वाला हमें तो आपसे प्यार हो गया है। 9868107070 मेरे वाला बस सॉन्ग सुन रहे हैं, और आज मुझे काफ़ी ज़्यादा ये कंप्लेंट आ रही है कि वो न्यूज़ ऑन ऐप के माध्यम से हमें सुन नहीं पा रहे हैं दोस्त, इसका हमें खेद है। और ये मैसेज ज़रूर हमारे जो सही जो कहते हैं ना कि टेक्निकल डिपार्टमेंट है वहाँ तक पहुँच गया होगा। आई एम

श्योर, और इसको जल्दी ठीक करने की कोशिश की जाएगी। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ, और इसी के साथ आपने हमें मैसेज भेजा है दोस्तों। एक मैसेज जो है रोहित खेरा जी, बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने हमें मैसेज लिखा है। सोचिए कितनी मेहनत करी है एक मैसेज को लिखने के लिए, और उनके जो जज्बात हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। और इन्होंने लिखा है कि राम राम जी, पकवान स्वादिष्ट बनते हैं सही मात्रा में मसाले और भाव डालकर। पकवान स्वादिष्ट बनते हैं सही मात्रा में मसाले और भाव डालकर। इंसान इंसान बनता है कर्म धर्म सच्चाई ईमानदारी से। अगर चाहते हैं आप भी ऐसे ही किसी इंसान से मिलना, तो कलयुग से होकर भी सतयुग के गुणों से भरा है, तो पहले उसको सुने समझे, फिर उनसे मिलने की राय बनाए और खुद को पावन बनाए। ऐसे ही नेक दिन इंसान इस समय लाइव संदेश पढ़ रहे हैं, जिनका शुभ नाम मेरी छोटी बहन प्रियंका वर्मा है। जब हमारी बॉलीवुड मूवीज में बिना देखे प्यार हो सकता है, तो क्या बिना देखे भाई बहन नहीं बन सकते हम? पवित्र है ये रिश्ता, नेक दिल का ये रिश्ता, जिनसे बनाया है ये रिश्ता वो है हमारे लय फरिश्ता। यूं ही नहीं बन जाता है इतना पवित्र ये रिश्ता। बहन की आंख में आए आंसू और भाई खुश हो ये नहीं हुआ अभी तक, इसलिए सदा खड़े हैं आपकी हिफाजत के लिए। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। रोहित खेरा जी ये हमें लिखते हैं दिल्ली से। अब बताइए दोस्तों, इसमें हम क्या कहें, आप बताइए आपको ये मैसेज कैसा लगा? वेल दोस्तों, हम आते हैं, मैसेज पढ़ते हैं रेडियो के। रेडियो एक माध्यम है जिससे हम जुड़े हुए हैं आपसे, आकाशवाणी रेनबो, इसका तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हम। और रोहित जी आपसे बस यही कहूँगी मैं, इतनी मतलब ऑफकोर्स आप जब भी मैसेज करते इतने दिल से मैसेज करते, इतना अच्छा लिखते हैं, और आपके जो भाव हैं वो समझ में आते हैं। आपके स्नेह आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए दिल से आभार, और यही मैं दुआ करती हूँ ईश्वर से कि आपकी हर रोशन रहे, खुशियाँ सम्मान और सफलता सदा आपके संग रहे। मैंने खुद भी कुछ लिखने की कोशिश की पर मैं अभी लिख नहीं पाई कि रिश्तों की डोर दिल से बन जाए तो बात बन जाती है। रिश्तों की डोर दिल से बन जाए तो बात बन जाती है, बिना मिले ही अपनों की पहचान हो जाती है। आकाशवाणी रेनबो पर आप 9868107070 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इसी के साथ नमस्ते जी, मनोज कुमार यूपी हरदोई सवाजपुर से प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, हमने कई मैसेज भेजे, मैसेज को शामिल नहीं किया गया, आज फिर भेज दिया, शामिल जरूर कर लेना। सिलाई के साथ सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक काम करते हैं, प्रोग्राम भी सुनते रहते हैं। दोस्त दीपू राम जी, अर्जुन, विमल, सुमित, मनमोहन, श्याम और अंकित भाई, राम किशोर, ठेकेदार, कोई भी अपनी पसंद का गाना सुना दो, हमें वही अच्छा लगेगा। वेल आप ही की पसंद के गाने चल रहे हैं, और देखिए आप अपने काम के साथ हमें सुनते हैं, और सिलाई किलाई का काम आप करते हैं। इसे कहते हैं ना कि म्यूजिक में सुर और ताल जरूरी होता है, ऐसे ही सिलाई में एक ऐसे सुई और धागे का रिदम होता है ना। देखिए कितना एक हम एक तरह से सारे काम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, देखें तो, है ना। और वेलकम टू द शो विद फ्लास, कैसी हैं आप? डियरेस्ट प्रियंका मैम, आई मिस यू सो मच मैम, मुझे वो गाना सुना है अरिजीत सिंह की वॉइस में, दिल संभल जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू या फिर जादू है नशा। ओके, आपने 2-3 रिक्वेस्ट भेजी, अंशी शर्मा हसनापुर मेरठ से हमें लिखती हैं, ओके दोस्त। उसी के साथ कोलर रोड भोपाल से राम बाबू, मालवीय मनीषा मालवीय, आपने भी हमें एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट भेजी है, ओके। और इसी के साथ हमें रवि जोशी मेरठ से लिखते हैं, मेरा वाला सॉन्ग में आपका स्वागत है, आज इस प्रोग्राम में जगजीत सिंह और चित्रा जी की गाई गजल ये करें या वो करें सुनने की, बहुत अच्छा है, ओके। ये कौन सी फिल्म का गाना है, मैं कोशिश करती हूँ इसे ढूंढने की, सुनवा दीजिए प्लीज़ अगर हो सके, अगर कोई शिकायत नहीं अगर आप ना सुनवा पाए, थैंक यू सो मच। पर अपनी लिखी कोई लेटेस्ट पोएम ज़रूर सुनवा दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जी, बिल्कुल कोशिश की जाएगी। और अच्छा लगा कि आप हमारे साथ इस तरह कनेक्ट रहते हैं। आदाब, आज हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, प्रोग्राम ऐप पर मोबाइल ऐप पर प्रोग्राम नहीं चल रहा है, ठीक करवाएं जी। जी बिल्कुल, कस्बा गनौर यूपी से फारूक अली खान हमें लिखते हैं। इसी के साथ जोया मेलबॉर्न ऑस्ट्रेलिया से भी हमें कंप्लेंट लिख रही हैं कि योर ऑनलाइन रेडियो लिंक इज डेड फॉर 2 आवर्स, नॉट वर्किंग एट ऑल, प्लीज फिक्स इट। ओके डियर, विल ट्राई आवर बेस्ट। और इसी के साथ आज हम आपको ये हमें मैसेज आया है प्रदीप सलूजा जी, ये भी हमें कह रहे हैं कि हमें सुन नहीं पाए हैं हिंदी ऐप
के थ्रू और इसी के साथ हमें मैसेज आया है आदर्श कुमार विलेज बहेरी बांद्रा, आप इतने यूपी से हमें लिख रहे हैं, आप इतनी मैसेज मुझे काउंटलेस मैसेज मुझे लग रहे हैं, मुझे पता भी नहीं कितने मैसेज भेजे हैं। अगर इस तरह से आप मैसेज भेजेंगे तो पता कैसे चलेगा कि आपने लिखा क्या है। हैप्पी अपने योग दिवस की हमें हार्दिक शुभकामनाएं भेजिए। जी बिल्कुल, आपको भी एडवांस में शुभकामनाएं। और जी हाँ, इसी के साथ मेरा वाला सॉन्ग में ओके परदेस मूवी का दिल है तुम्हारा कसम खा के ओके, ये हमें ना सुन दे परदेस मूवी का, सुना दे परदेस मूवी का, पर ये दिल है तुम्हारा का कसम खा के ही कौन सा गाना है। अभी हमें एक मैसेज आया था, मुझे लगता है सुनीता जी का मैसेज था शालिमा बाग से, इन्होंने कहा था दिल दीवाना परदेस फिल्म का, तो बिल्कुल कुमार सानू की आवाज, ये दिल दीवाना। जी दिल तो दीवाना होता ही है। वैसे दिल का ख्याल रखिए अपना किसी और का, क्योंकि एक वही है जो 24 घंटे काम करता है, बिना रुके काम करता है। दिल की धड़कन को महसूस किया, उसमें भी संगीत होता है।

आपको पता है दोस्त, गाना सिर्फ आवाज नहीं, एहसास होता है। हर बीट के साथ दिल का रिदम होता है। गाने सुनते ही सांसें थिरकने लगती हैं, सोच का शोर धीरे धीरे थमने लगता है।

पहले सी के साथ ही मैसेज आया है। गुड आफ्टरनून प्रियंका, कैसे हो? सूरज फुआ माध्यम लवली सॉन्ग पर सूरज आज बहुत, सूरज देव बहुत चमक रहे हैं। जी बिल्कुल, सच में कह रही हैं, बहुत तेज चमक रहे हैं। तो खुद की खोज में निकल, वेरी टचिंग एंड मोटिवेशनल पोएट्री, जो भी सुनो लगता है कि अगर कुछ कर गुजर जाएं कुछ टाइम बाद। ओके हाँ, इस गाने में कुछ तो बात है, आपको मोटिवेट करता है, कन्विक्शन है इस गाने में। एक कॉम्पोजिशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल, एक पोएटिक कॉम्पोजिशन है। बहुत ही प्यारी कविता लिखी है प्रियंका आपने। ओके, रिश्तों में भाव और सच्चाई हो, चाहे रिश्ता रक्त का हो ना हो, मानो तो पराए भी अपने हैं, ये दिल की धड़कन में संगीत है। राम राम जी। कक्षा में मॉनिटर की बागडोर सदा से काबिल छात्रा को ही दी जाती, इसलिए आप ही को चुना है प्रियंका जी, इतनी इज्जत देने के लिए, रिश्तों की डोर को अपना बनाने के लिए, दिल से बने संबंध को अपना बनाने के लिए, भावनाओं को समझने के लिए। भाई की और सितहे दिल से जय माता दी। रोहित खेरा दिल्ली से लिखते हैं, जय माता दी रोहित जी।

0: इसी के साथ हमें अर्जुन राठौर, अंकित राठौर, विमल माथुर, दीपू सक्सेना कहते हैं एक शायरी सुना दो, रघुवीर नगर से लिखते हैं। और इसी के साथ हमें, चलिए मैं आपको अपनी एक जो है आप सभी को डेडिकेटेड है, जब हम मेट्रो में होते हैं ना तो कहते हैं ना कि अगला स्टेशन आने वाला है, तो सोचिए अगला स्टेशन खुशी का है, दरवाजे आपकी और खुलेंगे, इसी बात पे मैंने लिखा है। और थोड़ा थीम को समझिएगा क्योंकि आप सभी को ये डेडिकेटेड है। और चलिए मैं आपको सुनाती हूँ, आपको कैसा लगेगा बताइएगा। अगला स्टेशन खुशी का है, दरवाजे आपकी और खुलेंगे, जिंदगी की लय में अब उम्मीदों के सुर खुलेंगे, जरा मुस्कुराइए आप बंधु, पलों की सिलबिटे भी समझ जाएंगे, इस तरह कशिश से दिल की धड़कनें भी सांसों में घुल जाएंगी।
1: Did you know, over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
2: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop and build world-class technologies right here at home.
1: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
2: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
1: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology and Indian determination.
3: 12 saal vishwas ke, vikas ke, jan kalyan ke.
4: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
5: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
4: क्या ये जांच उपलब्ध है?
6: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
7: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
6: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
7: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
8: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
10: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
11: पता का चाय, गजब का स्वाद।

चिन्मय के मेस्मराइजिंग वोकल्स और गहरे जज्बात से भरे बोल मिलकर एक मैजिकल म्यूजिकल एक्सपीरियंस क्रिएट करते। थैंक यू सो मच राजा अमर संजय रचना, आपने दरभंगा बिहार से रिक्वेस्ट किया इस ट्रैक को प्ले करने का, बहुत ही प्यारा ट्रैक है। और आपने सुना इसे आकाशवाणी रेनबो पर। इसी के साथ फिर से मैं आपको बताऊंगी रोहित खेरा जी हमें क्या लिखते हैं। सोचिए प्रोग्राम के साथ वो कितना अच्छा लिख रहे हैं, वो सुन रहे हैं और वो लिख भी रहे हैं साथ साथ। राम राम जी, अगला स्टेशन खुशी का है, दोपहर के 1 बजने को है। प्रियंका जी भी आने को है, रेनबो का स्टेशन होगा। सभी यात्री अपने सुनने की शक्ति को बढ़ा ले, अब आपको देशभक्ति के साथ शुद्ध विचारों के साथ मधुर संगीत सुनने को मिलेगा। बहन भाई मिलकर एक दूसरे का हौसला अफजाई कर रहे हैं। रोहित खेरा दिल्ली से लिखते हैं, दिल्ली नौ से लिखते हैं। थैंक यू सो मच। जी हाँ बिल्कुल, अभी इसी बात पता है मैंने बिल्कुल देशभक्ति का ही ट्रैक क्यों किया, क्योंकि आप सब फरमाइश करते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है कि एक देशभक्ति का ट्रैक जरूर, और मेरा मन भी मानता है कि एक देशभक्ति का ट्रैक तो जरूर सुनना चाहिए। अभी बहुत ही प्यारा लिखा हमें, धूप में भी सुरीला, आंधियों में भी मधुर। धूप में भी सुरीला, आंधियों में भी मधुर, ये रेडियो है जो हर पल है मधुर। कभी क्रिकेट का शोर, कभी गानों की बहार, ये है एफएम है जो लाए खुशियों की बहार। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, बहुत बढ़िया लिखा। प्रियंका जी आपका पोएटिक प्रतिभा का जवाब नहीं, ये मुस्कुराहट भी एक ऐसी कशिश है कि सामने वाले को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। जी हाँ, रवि जोशी मेरठ से लिखते, वो कहते ना चेहरे की जो मुस्कान देखे मुस्कान आई जाती है, इन्फेक्शियस होती है बिल्कुल, और कहते हैं मुस्कान जो होती है वो खुशी ले आती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक कर देती है। ऑनलाइन प्रोग्राम्स नहीं आ रहे हैं, साथ ही कुछ दिन से नॉर्मली क्लैरिटी नहीं है। ओके, या मैं डॉली लिखती हूँ दिल्ली से, मेट्रो की खुशी के दरवाजे, बहुत अच्छा लिखा है, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ खुद को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और को खुश करने की कोशिश करना, बिल्कुल। मैं निरंकारी कॉलोनी से संजीव हैं, फैमिली मेंबर्स जीविका, मुस्कान, सपना, आरती। देखिए मुस्कान की बात की, चेहरे की, यू नो, और मुस्कान का एक मैसेज भी आ गया। और इसी के साथ हमें मैसेज है, भगवती जी मेरी भी हाजिरी लगा दो। बिल्कुल, मैं जब भी सोचती हूँ आपका मैसेज पढ़ना है, बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। आपने भी 3-4 रिक्वेस्ट की है हमसे, आज तो शायद मैं नहीं यू नो प्ले कर पाऊंगी, लेकिन फिर कभी। और अच्छा लगा कि आप बिल्कुल कनेक्ट रहती हैं प्रोग्राम के साथ, और इसी तरह हमारे आकाशवाणी रेनबो के साथ कनेक्ट रहिएगा। और इसी के साथ हमें मैसेज आए हैं, ओके प्लीज प्ले माई रिक्वेस्ट, आई रियली लव योर प्रोग्राम, पटना से हमें लिखा है प्रगति ने। और थैंक यू, बस अगर गाने प्ले नहीं होते ना किसी वजह से, टाइम देखो 1 घंटा होता है। अंशी, ओके हाँ अंशी, आपका भी गाना लगाना, लेकिन अगर नहीं होता ना तो प्लीज हमारे स्टेशन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मैंने कहा था पेट्रियाटिक गाना, तो बिल्कुल इस गाने को, ये गाना सिर्फ सुना नहीं जाता है, महसूस भी करा जाता है।

जाके चले। दोस्तों ये सिर्फ एक पेट्रियोटिक गाना नहीं है बल्कि हर सोल्जर के जज्बात का गहरा एहसास है। उन्होंने अपने माथे पर सिर्फ माटी नहीं अपने देश की इज्जत अपनी भारत माता का गुरूर भी सजाया है। इसी के साथ मुझे यानी प्रियंका वर्मा को दीजिए इजाज़त क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम बिल्कुल दीपिका लेके आ गई हैं और उनके साथ रहिएगा और बस गानों के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखिए और अपनी चॉइस बताते रहिए। और साथ में ये जो मैसेज आया है कि हमारा स्टेशन ऑफ द नेशन AIR FM रेनबो है जो दिल से शुरू होता है दिल तक रहता है। रवि जोशी मेरठ से लिखते हैं, बस इसी तरह प्यार बनाए रखिए आकाशवाणी रेनबो के साथ। इसी के साथ टेक केयर, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका, लेकर हाजिर हूँ प्रोग्राम आशियाना। पिछले एक घंटे आपने सुने अपनी पसंद के गाने, यानी कि वो गाने जिनकी फरमाइश आप व्हाट्सएप के जरिए कर रहे थे और प्रियंका आपको सुनवा रही थी वही गाने। अब यहाँ आशियाना प्रोग्राम में आप मेरे साथ जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कुछ बातें होंगी, कुछ प्यारी प्यारी बातें होंगी और खूबसूरत गानों का साथ तो बिल्कुल रहने वाला है। तो बस थाम लीजिए मेरा हाथ और निकल पड़िए इस सफर पर मेरे साथ, क्योंकि बातों का सिलसिला अब शुरू होगा। और जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि जब बातें अपनों से की जाती हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि बातें कहाँ से शुरू हो रही हैं, बातें कहाँ तक जा रही हैं, क्योंकि तब बातें सोच समझ कर नहीं की जाती, तब बातें दिल से की जाती है। और दिल की ही कुछ बातें आज यहाँ मैं करने वाली हूँ। क्या कुछ बात करूंगी, क्या है इरादा, सब बताऊंगी। फिलहाल के लिए इस खूबसूरत से गाने के साथ करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत।

जी हाँ, ऐसा कई बार होता है कि हम किसी को इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं कि लगता है वो इंसान खुद भी नहीं सोच सकता कि हम उसको कितना प्यार करते हैं या फिर वो हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। अब जिक्र मैंने किया था ना दिल की, कुछ बातें करूंगी, तो दिल की बात चली है तो फिर बात प्यार तक तो पहुंचेगी, क्योंकि प्यार, ये जो खूबसूरत सा एहसास है, ये शुरू तो हमारे दिल से ही होता है। अब प्यार के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ सुना गया है, ये एहसास कैसा है, इसे महसूस करते हैं तो क्या फील होता है। कई लोग तो ये तक कह देते हैं कि प्यार को जब हम महसूस करते हैं तो असल में हम क्या महसूस कर रहे होते हैं वो हम बयां ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं होते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है प्यार की सबसे खूबसूरत, सबसे सच्ची, सबसे इनोसेंट, सबसे प्योर फॉर्म क्या है, प्योर लैंग्वेज क्या है? सोचा है कभी? वैसे अगर नहीं भी सोचा होगा तो आप जानते जरूर होंगे इस बारे में। आप सोच रहे होंगे कि जब सोचा नहीं है तो जानते कैसे होंगे, क्योंकि देखिए हम अलग अलग तरीके से प्यार एक्सप्रेस करते हैं, सबका वे ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अलग होता है। हो सकता है मैं लफ्जों के जरिए प्यार एक्सप्रेस करती हूँ, लेकिन हो सकता है जो दूसरा इंसान हो वो अपने जेस्चर्स के जरिए अपना प्यार जता रहा हो। तो चलिए आज इसी बारे में कुछ कुछ बात करते हैं कि आखिर ये जो खूबसूरत सा लव्स है प्यार, ये जो खूबसूरत सा एहसास है प्यार, इसकी सबसे खूबसूरत, सबसे इनोसेंट और सबसे प्योर लैंग्वेज क्या है, क्या हो सकती है, करेंगे बातें। बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए बहुत ही प्यारे से एक गाने के साथ बढ़ाते हैं शो को आगे। आपको जाना कहीं नहीं है, और मुझे पता है इतना इंटरेस्टिंग, इतना प्यार भरा टॉपिक है तो आप कैसे ही जा सकते हैं ना। तो बस बने रहिए मेरे साथ, फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए और दीपिका के साथ इस सफर में जुड़े रहिए।

ये जो खूबसूरत से लिरिक्स है ना इस गाने के, असल में ये भी प्यार की एक बहुत ही प्यारी सी लैंग्वेज है, जब आप किसी की मुश्किलों को खुद पर लेने का सोचते हैं, जब आपको लगता है कि वो जो एक इंसान है उसकी आंखों में आंसू आ कैसे सकते हैं, कोई उसे रुला कैसे सकता है, कितना तो प्यारा है वो, उसके पास तो कोई मुश्किल कोई दर्द आना ही नहीं चाहिए, और अगर आएगा ना तो मैं ढाल बन जाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि ये आप सिर्फ रिलेशनशिप में या अपने पार्टनर के लिए सोचते हैं, ये हमारे पेरेंट्स हमारे लिए सोचते हैं, हमें भी एक टाइम के बाद अपने पेरेंट्स के लिए ये चीज़ सोचनी चाहिए, हम अपने सिबलिंग्स के लिए सोच सकते हैं, किसी के लिए भी। ये प्यार की जो लैंग्वेज है ना, जब आप ये कहते हैं कि परेशानी में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम क्यों डर रही हो या तुम क्यों डर रहे हो, मैं तो हूं ना, ये जो लैंग्वेज है ये असल में प्यार की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, क्योंकि हर बार प्यार सिर्फ आई लव यू बोलना नहीं होता है, बल्कि मुश्किल वक्त में हाथ थाम कर खड़े होना, ये भरोसा देना कि जिंदगी चाहे पटरी से उतर जाए लेकिन ये हाथ नहीं छूटेगा, ये प्यार का एक बहुत ही खूबसूरत भाषा होती है, एक बहुत ही खूबसूरत लहजा होता है और एक बहुत ही खूबसूरत तरीका होता है प्यार जताने का।

जी बिल्कुल, मोहब्बत कीजिए, ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ मोहब्बत अपने आप से भी कीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल बात हो रही है आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना में इस बारे में कि आखिर प्यार की सबसे सच्ची, सबसे प्यारी, सबसे इनोसेंट भाषा क्या है। अब जिक्र मैंने किया कि मुश्किल में जब आप किसी से ये कह देते हैं कि मैं हूँ ना, तुम डरो मत या तुम घबराओ मत, या दूसरे इंसान को जब वो सिक्योरिटी होती है ना, उसे बिना बोले ये पता होता है कि अगर मैं परेशानी में होंगी तो ये इंसान ज़रूर मेरे साथ होगा, इससे प्योर बताइए कोई लैंग्वेज हो सकती है प्यार की। एक और चीज़, जब आप किसी के लिए वक्त निकालते हैं ना, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में सब कुछ लौट कर आ सकता है, वक्त कभी लौट कर नहीं आ सकता। जब आप किसी के लिए वक्त निकालते हैं, किसी के साथ बैठकर, किसी का हाथ थामकर उसकी बात सुनते हैं, उसके साथ वक्त बिताते हैं, या अगर एक बार वो आपसे ये कह दे कि अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, क्या हम बात कर सकते हैं, क्या हम मिल सकते हैं, तो सारे काम छोड़कर जो सामने वाला इंसान है वो उसके लिए वक्त निकाले, तो इससे सच्ची भी प्यार की और कोई भाषा नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे मैंने कहा, वक्त वापस लौट कर नहीं आता, इसलिए जब आप किसी को वक्त दे रहे होते हैं ना, तो आप उसे अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा दे रहे होते हैं जो आप उसके नाम कर रहे हैं और जो वापस लौट कर नहीं आ सकता।

0: हे, तुम्हें पता है पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के रक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है। स्वदेशी उत्पादन और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देकर भारत आत्मविश्वास के साथ रक्षा क्षेत्र के भविष्य का निर्माण कर रहा है।
1: बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में रक्षा मंत्रालय भारतीय कंपनीज को भारत में ही विश्व स्तर की तकनीकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।
0: हाँ, सही है। इस बदलाव में HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अग्रणी भूमिका निभा रहा है। स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों से लेकर प्रशिक्षक परिवहन विमान और उन्नत एरोस्पेस प्रणालियों के माध्यम से ये भारत के रक्षा भविष्य को मजबूत बना रहा है।
1: और सबसे खास बात, HAL ने प्राइवेट इंडस्ट्री और हजारों MSMEs को जोड़कर देश में एक मजबूत एरोस्पेस इकोसिस्टम भी तैयार किया है।
0: इस तरह भारतीय प्रतिभा, तकनीक और संकल्प के बल पर हर नवाचार भारत को आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ा रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो और कल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। योग हमारी जिंदगी का कितना महत्वपूर्ण

क्षमता को बेहतर बनाना हो, हाथ पैर और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करना हो, तनाव और थकान को कम करना हो, ब्लड फ्लो को बेहतर बनाना हो या फिर बॉडी में एनर्जी लेकर आना, बहुत सारी चीजें हैं जो चक्रासन करके आपको महत्वपूर्ण हो महसूस हो सकती हैं। लेकिन ये एक थोड़ा सा जटिल आसन है, ऐसे में इसे करने से पहले आपको किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसे कैसे करना है इस विषय में जानने के लिए भी आपको किसी योग शिक्षक से बात करनी चाहिए। किन कंडीशंस में इसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कमर दर्द, गर्दन की समस्या और भी कई ऐसी दिक्कतें होती हैं जिसमें इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। बात वैसे सिर्फ चक्रासन या किसी भी एक योगासन की नहीं है, बात इतनी है कि योगा को अपनी जिंदगी में शामिल करके आप अपनी सेहत को बेहतर बनाएं। ये केवल हमारी एक प्राचीन परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारी सेहत के लिए बहुत अहम चीज है।

0: Hey, did you know? Over the past 12 years, under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi, India's defense sector has witnessed a remarkable transformation. From boosting indigenous manufacturing to strengthening defense exports, India is shaping the future of defense with confidence.
1: You are right. In the defense sector, the Ministry of Defense has been creating the right environment for Indian companies to design, develop, and build world-class technologies right here at home.
0: Exactly. And one name that's leading this transformation is HAL, Hindustan Aeronautics Limited. From indigenous fighter aircraft and combat helicopters to trainers, transport aircraft, and advanced aerospace system, HAL is helping build the future of India's defense.
1: HAL is bringing together private industry and thousands of MSMEs to create a powerful defense manufacturing ecosystem.
0: So, every innovation is taking India one step closer to an Atmanirbhar Bharat, powered by Indian talent, Indian technology, and Indian determination.
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के.
3: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त.
4: पता का चाय, गजब का स्वाद.
5: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
6: स्टेज आ गया है. दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है.
5: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
6: बिल्कुल. डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी. अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा.
5: और विनर्स को क्या मिलेगा?
6: कैश प्राइजेस. फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए.
7: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान. रजिस्टर करें आज ही
8: www.delhitalenthunt.com. कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से.
9: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
10: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक 23 डिलीवरी.
9: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा.
10: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी. बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर.
11: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in.
12: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें. स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है.
13: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो.

जी हाँ, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, आपके साथ मैं हूँ दीपिका। बातें हो रही हैं कि आखिर प्यार की सबसे खूबसूरत, सबसे मासूम और सबसे प्योर लैंग्वेज क्या होती है। बहुत सारी बातें हमने यहाँ पर की और कुछ चीज़ें इसमें जोड़ूं, मुझे पता है हाँ जवाब है ना आपका। तो देखिए, जब ज़िंदगी में कोई ऐसा होना जो ये कह सके, जो आपकी मैं ठीक हूँ के पीछे छुपी थकान को पढ़ ले, जो आपकी चुप्पी का मतलब समझ ले, जो आपके बिना कहे आपकी ज़रूरत बता दे, तो प्यार की इससे खूबसूरत और इससे सच्ची भाषा और कुछ नहीं हो सकती। किसी का आपको समझ लेना, बिना कहे समझ लेना, किसी का आपके ठीक है कहने पर भी आपको रुक कर ये कह देना कि मुझे बताओ क्या बात है, मैं जानता हूँ तुम ठीक नहीं हो,

वैसे ये भी प्यार की एक बहुत प्योर लैंग्वेज है, जब सामने वाला खुलकर ये एक्सेप्ट कर सके कि आपके बिना गुजारा नहीं है। और हमारी ज़िंदगी में भी तो कितने सारे ऐसे रिश्ते होते हैं ना, जिनमें हमें ये लगता है कि हाँ, इस इंसान के बिना हमारा गुजारा नहीं है। वो हमारे सिबलिंग भी हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, पेरेंट्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकता है, लेकिन ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत कम लोगों के साथ आती है। और एक और फीलिंग जो अगर किसी के साथ महसूस हो रही है, तो वो बहुत ही प्योर लैंग्वेज है प्यार की। जब किसी इंसान के सामने ना बिना दिखावे के रह सकें, जब आपको उसके सामने कुछ भी प्रटेंड करने की ज़रूरत ना हो, आप जैसे हो बिना फिल्टर के कुछ भी कह सकें, बिना फिल्टर के उसके साथ रह सकें, अपने दिल की बातें बोल सकें, खुल के हंस सकें, खुल कर रो सकें, जब बिखर रहे हों तो बता सकें कि अंदर चल क्या रहा है, जो जब हाल चाल पूछे तो उसे झूठ नहीं बोलना पड़े, उसे मैं ठीक हूं नहीं कहना पड़े, उसे सच बताना पड़े कि ये है हाल, ये महसूस कर रही हूं मैं।

0: पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप दीपिका के साथ हैं। प्रोग्राम आप यहाँ पर इस वक्त सुन रहे हैं आशियाना, जहाँ बातें हो रही हैं कि आखिर प्यार, जिस एहसास की बातें तो बहुत होती हैं, जिसे इजहार करने का तरीका सबका अपना अलग अलग हो सकता है, पर आखिर प्यार की सबसे खूबसूरत, सबसे इनोसेंट भाषा क्या है, सबसे प्योर लैंग्वेज क्या है प्यार की। बहुत सारी बातों का जिक्र यहाँ पर मैंने किया और मुझे लगता है कि इन चीज़ों को जब हम महसूस करते हैं ना, तो हम अपने आप समझ जाते हैं कि हाँ, यही है वो प्यार जिसका जिक्र किस्से, कहानियों, शायरियों, किताबों और गानों में रहा है। प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, बल्कि निभाने से होता है, क्योंकि रिश्तों में छोटी छोटी बातों का बड़ा असर होता है। किसी के लिए वक्त निकालना हो, किसी के साइलेंस को समझना हो, कभी कभी सिर्फ एक लाइन कहना कि घर पहुंचकर मैसेज ज़रूर कर देना, या घर पहुंचकर बता देना, एक टेक्स्ट कर देना, ये भी प्यार के इजहार का, प्यार जताने का एक बहुत ही खूबसूरत सा तरीका होता है। या फिर सिर्फ एक ये मैसेज कर देना, खाना खाया, कल परेशान लग रही थी, ठीक है, या सोशल मीडिया पर इतना सैड स्टेटस क्यों डाला है, मूड खराब है क्या। ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत छोटी लग रही है ना, लेकिन असल में प्यार जताने का बहुत सच्चा और इनोसेंट तरीका है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ बना हुआ है आपका साथ, प्रोग्राम है आशियाना। बातें हमने की कि आखिर क्या है इस खूबसूरत से एहसास प्यार की, सबसे खूबसूरत और प्यारी सी प्योर वाली लैंग्वेज। बहुत सारी बातों का जिक्र मैंने किया, जाते जाते एक और छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी। जब आप रिश्तों में सुनने लगते हैं ना, सामने वाले की फीलिंग्स को इतनी अहमियत देने लगते हैं कि जवाब देने से ज़्यादा या रिएक्ट करने से ज़्यादा या अपनी बात कहने से पहले आप उसकी बात सुनने की कोशिश करते हैं, तो ये भी प्यार का एक बहुत खूबसूरत सा एहसास है। तो बस इसी खूबसूरत से एहसास के साथ प्यार को जताते रहिए, रिश्तों में प्यार बढ़ाते रहिए। और फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में दीपिका को दीजिए इजाज़त। आपके साथ 4 बजे दोबारा मैं जुड़ूंगी, लेकिन यहाँ अभी इस प्रोग्राम के लिए आपको मुझे इजाज़त देनी होगी। 3 बजे से यहाँ पर आप सुनेंगे प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर, जिसका आज का विषय है हेल्दी एजिंग के लिए योग। तो बस आपको फिलहाल दीपिका को इजाजत देनी है, लेकिन हाँ, रिश्तों में प्यार बढ़ाते रहिए, प्यार बांटते रहिए, प्यार के खूबसूरत एहसास के साथ जुड़े रहिए। आकाशवाणी एफएम रेनबो सुनते रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM Dragoban
2: 103 MHz
1: News, Music and Entertainment FM 103 MHz
3: Listeners, please stay tuned for our program Local Artists. You're tuned in to FM Dragoban at 103 MHz.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, अरब निकल्स ऑफ पीट्यून इन क्रिकिना से आकाशवाणी को हिमा एफएम चौकबाम 103 मेगाहर्ट्ज़ दे अपनी खलगा होस्ट और दोस्त आज तम जिन लोगों दे और इतिहास शुरू कर दिया से एक एसएमएस रिक्वेस्ट इन फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम एक्चुअली

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Listeners, let us get going as we kickstart things off with a song by Asking Alexandria featuring Mariah Brink on their song called New Devil. Listeners, enjoy.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारम्भ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक

0: शिक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2,500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1,500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
3: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
4: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका

0: प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के दो महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं था चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
2: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
1: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
1: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जल डमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा

0: यूपीए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
1: The National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination is scheduled for tomorrow. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Ahead of the examination, the National Testing Agency NTA has conducted nationwide mock drills as part of preparations for the re-examination. The NTA said it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. More from our correspondent.
2: Over 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed for the secure, transparent and smooth conduct of the examination. A multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. It includes CCTV surveillance, Aadhaar-based biometric verification, GPS-enabled vehicles with police escort for the movement of the examination material, and end-to-end secure handling of confidential materials to designated locations under sealed protocols. The NTA is also actively monitoring social media platforms to curb misinformation and prevent malpractice. The examination will be held from 2 p.m. to 5 p.m. tomorrow. Saklayan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
1: Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today inaugurated Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur worth over 1,445 crore rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and other dignitaries were present on the occasion. Addressing a public gathering, Mr. Shah said the Sri Ambabai Temple, located in the historic city of Karvir, is a major centre of faith for devotees from across the country. He said the development project will transform the temple precinct into a modern pilgrimage destination while preserving its historical, cultural and spiritual heritage. He added that the project will enhance facilities for devotees and strengthen Kolhapur's position as a prominent religious tourism centre. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. Akashwani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the government's transformative initiatives driving the vision of an empowered India.
3: Over the last 12 years, the government has driven a structural transformation in India's high-tech landscape. Two of the most significant pillars of empowered India are the development of a semiconductor ecosystem and the explosive growth of space startups. The India Semiconductor Mission was launched in December 2021 with a massive outlay of 76,000 crore rupees. By 2026, the government launched Semiconductor Mission 2.0 with a provision of 1,000 crore rupees. Speaking about the Semiconductor Mission 2.0, Electronics and IT Minister Ashwini Vaishnav highlighted that while Mission 1.0 successfully established the foundational building blocks for this complex industry, Mission 2.0 will focus on deepening the ecosystem.
4: The first mission was to start the industry in our country, and it's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2 nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India. Now, the world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
3: The Indian Space Policy 2023 enables and permits the private entities to carry out end-to-end space activities, including undertaking launches, satellite realization and operations, data acquisitions and dissemination, and ground station. Talking to Akashwani News, Anil Prakash, Director General of the Space Industry Association of India, said that the country is currently home to more than 400 space tech startups.
5: पिछले In the last 12 years, India's space sector has undergone significant changes. Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the reform of the space sector, the establishment of a space base and the increase in the private participation have started a new revolution. Today, more than 400 space tech startups operate in India, which are innovating in areas such as satellite, launch vehicle, earth observation and data service. India's first space tech unicorns, Skyroot Aerospace, is a proof of this change.
3: Through the breakthrough of the semiconductor mission and a thriving private space sector, India's journey toward a developed nation is being realized today as an empowered India. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: At least 5 devotees lost their lives and 40 to 50 others were injured after a portion of a temple structure collapsed in Manvad Taluka of Maharashtra's Parbhani district today. The incident occurred when a large number of devotees had gathered at the temple for darshan. Rescue teams rushed to the spot and launched relief operations immediately. Around 20 to 25 people were rescued from the debris, while nearly 15 injured devotees are undergoing treatment at a nearby hospital. Prime Minister Narendra Modi and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis have expressed their condolences to the families of the pilgrims who lost their lives in the accident. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back, here with us on the news at 9. International Yoga Day 2026, IDY 2026, will be celebrated tomorrow to mark the 12th International Day of Yoga, with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of IDY 2026 will be held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the common yoga protocol. More from our correspondent.
6: The Ministry of Culture is organizing a special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations, including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in Maharashtra, Nalanda in Bihar, Ahmedabad in Gujarat, Sarnath in Uttar Pradesh, Leh in Ladakh, Hyderabad in Telangana and Silchar in Assam. In coordination with the Indian Council for Cultural Relations, more than 210 Indian missions abroad will organize yoga events at nearly 2,500 locations across the world. In Delhi, yoga celebrations are being organized at prominent public locations including Lawn of Shanti Path, Kartavya Path, New Moti Bagh, CP Central Park, Talkatora Garden and Yamuna Sports Complex. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
1: Iran's Joint Military Command announced today that the Strait of Hormuz has been closed once again, citing continued Israeli military operations in Lebanon and what it described as U.S. bad faith and a failure to uphold commitments aimed at ending the conflict. In a statement broadcast on state television, the command warned that further measures have been prepared if what it called aggression continues. In cricket, India completed a clean sweep of the 3-match one-day international series with a comprehensive 9-wicket win over Afghanistan in the final match at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai today, as Yashasvi Jaiswal smashed an unbeaten century. Chasing a modest 219-run target, India raced to victory in just 28.4 overs, losing one wicket. Jaiswal slammed an unbeaten 110 off 86 balls, while Rohit scored 79 off 69 deliveries. In the FIFA World Cup, the Netherlands will take on Sweden today at 10:30 p.m. IST. The match will be played at NRG Stadium in Houston, United States. The two sides have met 20 times in the past. Their most recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
7: Spotlight.
8: This is Akashvani. In the program Spotlight, on the eve of International Yoga Day, we bring you an exclusive interview with Pratap Rao Jadhav, Union Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush. Interviewer is Deeksha Saxena, Akashvani correspondent.
9: हर साल की तरह इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस साल विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। आखिर क्या है योग? ये ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या है जिसने पूरी दुनिया को ये सिखाया है कि सांसों पर नियंत्रण के माध्यम से हम अपने विचार और जीवन को किस प्रकार संतुलित कर सकते हैं। विश्व भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को भी प्रमाण कर रही है। योग दिवस 2026 और योग से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मुख्य अतिथि मौजूद हैं। मैं स्वागत करती हूं केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जादव जी का। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत।
10: नमस्कार, धन्यवाद।
9: सबसे पहले मैं आपसे इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के बारे में जानना चाहूंगी। इस थीम को चुनने के पीछे क्या विचार था?
10: अभी इस साल जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है 12वां, उसकी थीम बहुत ही दूर की सोच हम जैसे बोलेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री ने की है, क्योंकि बहुत सारे सुझाव थीम के बारे में आए थे। हमने उसमें से कुछ गिने चुने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे थे और उन्होंने ये थीम उसमें से सिलेक्ट की। इसके पीछे का एक ही मतलब है कि आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा वाला अगर कोई देश होगा तो हमारा भारत देश। लेकिन जब हम आगे जाकर सोचेंगे, हो सकता है 25-50 साल के बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वाला देश भी भारत ही रहेगा, और उस समय भी फिर हमारे बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य ठीक रहे, वो भी उनकी सेहत अच्छी रहे और उनको कोई बीमारी या कठिनाई ना हो, ये सोचकर ये थीम रखी है कि योग फॉर हेल्दी एजिंग, कि अगर बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज से हर दिन योगा करो। और उसके लिए हमने योग 365 भी हमने लॉन्च किया है कि एक दिन योग करने के लिए नहीं है, योग हर दिन करना चाहिए। तो ये थीम के पीछे का मतलब है कि बुढ़ापे में भी आप स्वस्थ रहो।
9: आज विश्व भर में जो वैज्ञानिक हैं और चिकित्सा समुदाय है वो योग की हेल्दी एजिंग में काफी योगदान दे रहे हैं और उसको लेकर काफी गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर भी इस विषय पर पब्लिश हो चुके हैं, तो इस विषय में कृपया आप हमारे श्रोताओं को थोड़ी जानकारी दें।
10: ये देखिए, जो भी बड़े बड़े योग संस्थाने हैं, हमारे भी आयुष की भी जो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान है, पहले जो था हमारा आयुर्वेदा था, योगा था, लोग तो इसको जानते थे, इसकी ताकत भी जानते थे कि भाई कितना उपयोगी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे कि वो एविडेंस मांगते थे, रिसर्च क्या हुआ इसके बारे में पूछते थे, तो वो बहुत कम था। लेकिन 2014 में जब आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई और 2014 से लेकर आज 2026 तक ये 12 साल में योगा क्या हो, आयुर्वेदा हो, सभी के आयुष के ऊपर बहुत सारे हमने रिसर्च भी बढ़ाए, एविडेंस भी हम इकट्ठा कर रहे हैं कि हम खुले दिल से दुनिया के सामने जाए कि हमारे प्रमाण है और ये बात सही है और उसमें है भी। तो वैसे योगा के भी रिसर्च हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, अपन गए थे बेंगलोर में, चलिए हम आयुष मंत्रालय भी हमको हम उनको आर्थिक मदद भी करते हैं रिसर्च करने के लिए। तो ये सभी के ऊपर रिसर्च के वजह से ये लोगों को प्रमाण आ गया कि योगा, और दूसरा लोगों ने खुद अनुभव लिया कोरोना के समय, जब कोरोना जैसी महामारी आई तब कोई दवा टेबलेट नहीं थी या वैक्सीन भी नहीं था, तब लॉकडाउन में लोगों ने घर में बैठकर ही दिन रात शाम सवेरे योगा किया, आयुर्वेदिक उपचार काढ़ा वगैरह लिए, और हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश ने भी कोरोना पर हमने कंट्रोल वहां पर किया। तो लोगों को तो ये मालूम है कि योगा ये प्रिवेंटिव है, कोई बीमारी ना हो स्वस्थ रहने के लिए योगा किया जाता है, और दूसरा ये सिर्फ शरीर के लिए नहीं मन की शांति के लिए भी योगा बहुत अच्छी तरह से काम करता है। और इसके भी प्रमाण है, दुनिया मान रही है। अभी देखो 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र की बैठक में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हमारा मंजूर हुआ 21 जून, आज 190 कंट्री से ज्यादा कंट्री में ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया जाता है। हमारे देश में तो गांव-गांव तक योग का लोग अभ्यास करते हैं, प्रोटोकॉल का अभ्यास करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री की भी ये सोच रही थी कि हर आदमी, चाहे बालक हो या चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या हमारे यंगस्टर हो, सभी ने योगा करना चाहिए।
9: आपने इतने विस्तार में हमें समझाया योगा के बारे में, और हर साल ही देश के अलग अलग भाग में योगा का मेन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेन इवेंट कलकत्ता यानी कैलकटा में आयोजित किया जा रहा है। इस बड़े आयोजन के लिए किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं और इस बार के मुख्य कार्यक्रम में क्या विशेषताएं होंगी?
10: इस बार इसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता को चुना है। जैसा कि हमें हर साल अलग अलग प्रदेशों में जाके योग दिन मनाया जाता है, लेकिन कलकत्ता चुनने के पीछे भी बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि हमारे स्वामी विवेकानंद ने ही पश्चिमी देशों में जाकर योग का महत्व लोगों को बताया था, योग का प्रचार भी किया था। लेकिन दुर्भाग्य एक है कि कोलकाता हो या पश्चिम बंगाल में पिछली जो सरकारें थी उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया। शायद उनकी गलत फहमी होंगी कि योग अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, योग तो ऋषि मुनियों की देन है। हम इसका अगर प्रचार प्रसार करेंगे तो लोग, कुछ उनकी वोट बैंक है वो नाराज हो जाएंगी। उनको खुश रखने के लिए उन्होंने कभी योगा को प्रमोट नहीं किया। लेकिन इस साल वहाँ की पूरी जनता ने भारी बहुमत से वहाँ पर एक हिंदुत्ववादी विचार सरने वाली एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार वहाँ पर चुन के दिए, और वो वहाँ के आम लोगों की भी ये अपेक्षा है कि योग हमारे तरफ भी आए, हम भी लोग योग यहाँ पर सीखे। कोलकाता को चुना गया, बहुत सारी तैयारी हमने उसमें कही, जैसे कि 21 जून के 100 दिन पहले के काउंटडाउन कार्यक्रम होता है, तो वो 100 दिन में पूरे भारतवर्ष के 100 बड़े बड़े शहरों में भी योग महोत्सव वहाँ के इंस्टीट्यूट को साथ में लेके किए जाए। उसके बाद में हमारा आयुष मंत्रालय और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा 4 बड़े काउंटडाउन के कार्यक्रम होते हैं, जो भी हमारे अलग अलग प्रदेशों में चारों दिशाओं में हमारे देश के होते हैं। तो उसका पहला कार्यक्रम जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, भरत मंडपम में। दूसरा जो कार्यक्रम था वो महाराष्ट्र के लोणार शहर में हुआ था, जहाँ पर वर्ल्ड फेमस क्रेटर है। उसके बाद में 50 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था वो हमने हैदराबाद में जो इंस्टीट्यूट है हमारा कान्हा शांतिवनम, हार्टफुलनेस बहुत अच्छी ढंग से वहाँ पर किया। सिर्फ वहाँ पर हमने योग महोत्सव नहीं किया, तो लोनार में हमने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वहाँ पर त्रिकोणासन का लोनार में बनाया, हैदराबाद में हार्टफुलनेस में भुजंगासन का भी 6000 से ज्यादा, लोनार में भी 6000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ में किया था महाराष्ट्र में, तो वो भी रिकॉर्ड वहाँ पर स्थापित किया। फिर उसके बाद में 25 दिन पहले वाला खजुराहो में हमने मध्य प्रदेश में किया, और अभी मेन इवेंट ये कोलकाता में होने जा रहा है। तो कोलकाता में भी बहुत सारे जो तैयारी मुझे पूछी, और 21 तारीख को सवेरे हमारा जो रेड रोड है वहां पर करेंगे, क्योंकि पहले हमने परेड ग्राउंड चुना था, लेकिन अभी ये बारिश के दिन है, कभी भी बारिश आ सकती है, तो वहाँ थोड़ी भी बारिश आए तो कीचड़ होने से डिस्टर्ब हो जाएंगे करके, और रेड रोड एक अच्छी जगह है कि वहाँ बारिश भी रही तो कोई तकलीफ नहीं होगी, योगा कर सकते हैं। तो वहाँ पर योगा का मेन कार्यक्रम रहेगा, और वहाँ के कारपोरेशन और वहाँ के राज्य सरकार के साथ भी जाके हमने फिजिकली भी बैठक की, उनमें भी बहुत सारा उत्साह दिखा। तो उन्होंने देखा हम यहाँ तो रोड पर करेंगे, लेकिन कलकत्ता के शहर के अंदर हर स्ट्रीट के ऊपर हम योगा करने के लिए लोगों की व्यवस्था करेंगे, हर जगह स्क्रीन लगाएंगे, वहाँ पर भी हम कोई मैट वगैरह ये बिछाए करके लोग घर के बाहर आके गली में ही 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल का अभ्यास करेंगे। तो तैयारी बहुत है, हमने तो ऐसा अनुमान लगाया था कि भाई 1 लाख तक लोग शामिल होना चाहिए वहाँ पर, लेकिन उन्होंने खुद हो गया कि हम गली गली में करके हम 10 लाख तक भी लोगों को योगा करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश करेंगे।
9: सर, योगा महोत्सव के दौरान जो आपने खजुराहो जिसका जिक्र किया था आपने अभी, उसके दौरान योगा संगम पोर्टल और योगा पार्क पोर्टल भी लॉन्च किया गया, तो हमारे श्रोताओं को कृपया आप बताएं कि योगा पार्क पोर्टल क्या है और आम जनता को इससे क्या लाभ होगा?
10: ये योग पार्क का जो पोर्टल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हर गांव में, चाहे छोटा गांव हो या बड़ा शहर हो या हमारी नगर पालिका हो, कि हर जगह में हर एरिया में अभी ऐसे योग क्लब बनने लगे। लोग एक जगह इकट्ठा आके योग करते हैं। देखो ये अकेले करने में थोड़ा दिक्कत आती है कि लोगों को ऐसे एकदम फ्रीली महसूस नहीं होता, 50-100 लोग एक साथ में आके योगा करते हैं तो उनका उत्साह भी बना रहता है, तो उसके लिए योग पार्क बनना चाहिए। तो वो हमने स्कीम वहां पर लाई। हमने पीछे जो हमारी आयुष इंडस्ट्रीज है, बड़े बड़े वैद्यनाथ वगैरह जैसे हमारे जो बहुत सारे कंपनियां है कि इनको हमने बुला के भी बोला था कि भाई सीएसआर फंड में से कुछ योग पार्क बनना चाहिए, तो उन्होंने सबने मिलकर लगभग 1000 से ज्यादा योग पार्क बनाने के लिए भी उन्होंने कंसेंट दिया था। अभी हम नगर पालिका कारपोरेशन नगर पंचायत है इनसे मिलकर हम कर रहे हैं कि जगह उनकी रहेंगे, वहां पर एक योग पार्क बनेगा जहां सभी लोग जाके योग करेंगे। तो योग पार्क के पीछे के लोगों को थोड़ा योगा कर

0: करने के लिए सुविधा मिले और सामूहिक रूप से लोग वहाँ पर योग करें।
1: योग वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है कि 14 जून यानी कि योग दिवस से एक हफ्ते पहले आपके मंत्रालय ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें सुबह 5 बजे उठ के पूरी दुनिया भर से 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा करा। इस पे मैं आपसे और जानकारी चाहूंगी।
0: पहले जो राज्यकर्ता लोग थे उन्होंने कभी योग को महत्व नहीं दिया, प्रचार प्रसार भी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान इस देश के बने, उन्होंने हमारे देश में और देश के बाहर के भी लोगों तक योगा को ले जाने की कोशिश की और लोग भी ये समझने लगे कि भाई योगा से हमको मन शांति मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं, इसके प्रमाण भी है, रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो इससे आप कौन ऐसा आदमी कि वो चाहता नहीं कि मैं स्वस्थ रहे, ये तो सभी लोग चाहते हैं, लेकिन ये छोटे समय में आधा घंटा पौना घंटा में कुछ समय देके ये कर सकते हैं, तो इसको लोकप्रिय बनाया। अभी जो तुमने जिक्र किया कि आज यूट्यूब पर एक लाइव स्ट्रीम हमने एक आयोजन किया था, गिनीज बुक में भी उसका रिकॉर्ड तय हो गया। पहले का जो रिकॉर्ड था तो उसमें 2,40,452 लोगों ने ऑनलाइन योगा किया था, ये देखा नहीं, इसमें योगा भी लोगों ने किया है सवेरे उठ के। और आज का जो हमारा रिकॉर्ड आया तो 4,35,837 लोगों ने वहां पर एक साथ में अलग अलग जगह पर, किसी ने घर में किया, किसी ने गली में किया, किसी संस्थानों ने बाहर किया, हमने भी यहाँ पर सभी हमारे मंत्रालय के लोगों ने यहाँ पर लॉन में योगा किया। तो ये लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है योगा के प्रति। अब बहुत सारे युवा भी अभी योगा करने लगे कि हमने योग अनप्लग नाम का भी एक हमने उनके लिए पैकेज लाया हुआ है कि उनके माध्यम से युवा को भी हम जोड़ रहे हैं, महिलाओं को भी जोड़ रहे हैं, बुजुर्गों की भी है, नॉन कम्युनिकल जो 10 बड़े डिसीज है उनके लिए भी हमने योग के पैकेज बनाए हुए। बीपी वालों ने कौन से आसन करना चाहिए, शुगर वालों ने कौन से करना चाहिए, अगर कोई मेंटली उसको कोई तकलीफ है तो उसके लिए कैसा ध्यान और योगा एक साथ में कर सकते हैं, कैंसर हो, हार्ट का प्रॉब्लम हो, किडनी हो, लिवर हो, पैनक्रिया हो, सभी के लिए अलग अलग पैकेज। इतना ही नहीं, लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी और फिर से तुम अच्छी तरह से काम। उसके बाद में हमने अपनी योग फॉर एयर ट्रेवल्स लॉन्च किया। अभी लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते 8-8, 10-10 घंटे एक ही चेयर पर बैठे रहना पड़ता है प्लेन में, तो थकान सी महसूस होती है, तो फिर प्लेन में भी तुम चेयर पे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, वो भी हमने लॉन्च कर दिया। उसके ऐसे बहुत सारे योग को प्रचलित लोगों को प्रमाण देने के लिए निकाले और लोकप्रिय भी होते जा रहे।
1: भारत वर्तमान में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपके अनुसार इस यात्रा में योग का क्या महत्व है?
0: 2047 तक हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी देशवासियों ने हमने सपना देखा है कि हमको विकसित बनना है। मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, इसमें योग का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो हमारा फायदा होता है कुछ गिनते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे दो टाइप के हमको कोई भी चीजों में दिखता है। इसमें डायरेक्ट भी फायदे होने वाले हैं, इनडायरेक्ट भी। जब लोग योगा करेंगे स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश के नागरिक अगर स्वस्थ होंगे तो निश्चित उनका योगदान हमारे देश को आगे बढ़ाने में भी ज्यादा रहेगा, कम समय में भी हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने जाएगा। दूसरी बार योग की वजह से रोजगार बढ़ रहा है, अब हमारे पाठ्यक्रमों में भी योग आ गया, एशियाड में भी योग आ गया, अभी योग को खेल का दर्जा भी मिल गया, तो अभी स्कूल से योगा सिखाना शुरू होगा तो हर जगह पर डिमांड होगी योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर। अभी बाहर के देशों से भी बहुत सारी डिमांड आ रही है कि हमें योग टीचर, योग इंस्ट्रक्टर हमें दीजिए योग सिखाने के लिए। और अभी लोगों में भी जो अवेयरनेस आ रहा है, तो लोग भी अभी जगह जगह पे, जैसे कि हमारे ट्यूशन क्लास चलते हैं बच्चों के, अभी योगा क्लास शुरू हो गए बहुत सारे गाँव में हमारे भी, तो वहां पर लोग फीस देके एक घंटा योगा सीखने जाते या करने जाते, कि भाई हम अकेले में घर में नहीं कर सकते तो फिर वहां जाओ, तो ये रोजगार भी बढ़ गया। तो निश्चित रूप से देश के विकास में, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ाने में योग का बहुत बड़ा योगदान रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जादव जी, आपने योग दिवस 2026 के विभिन्न पहलुओं पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की रही, और आपको भी योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।
2: ऑन द ईव ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे, यू आर लिसनिंग टू एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद प्रताप राव जाधव, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। इंटरव्यूअर वॉज दीक्षा सक्सेना, आकाशवाणी।

0: FM 103 MHz।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: Swagar Health Center stay, BP laga free checkup, treatment aro kao phal thakibo laga motop diyeche. BP laga kumba sawal thakile, toll free number 1-800-1166-66 call koribi.
1: BP haribo, desh chitibo.
2: Kuku chankari NTEP bar diyeche.
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
5: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
6: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
6: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
7: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
5: अरे?
3: काट दिया।
7: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
7: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
8: RBI कहता है,
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: Hello, good evening, my dear friends, my lovely and awesome listeners. Abnikhan Sokhe program ni swagat kuri ase Akashvani Kohima FM.

0: जलने में कैसा है मजा, ओ हो हो तुम भी दिल देके जल जाना सीखो जी, आहा हा तुम भी दिल देके जल जाना सीखो जी।
1: कैसे?
0: दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी।

0: आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।